0: back right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज, जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है। क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं, दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
2: तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू दर्द के लम्हात में कुरान।
3: मदरसा दारुल कुरान व सुन्ना लिल बनैन वल बनात, मोहल्ला तौहीदाबाद, गांव स्पिनकाणी, नजदीक जामे मस्जिद तौहीद।
4: जमुन को मदरसा के सहर दशपगु बजो नवाखला तर गर्मी दुल सुबह बजो पूरे, द जनानो तालीम और हम दगशान द द्रु बजो नवाखला तर माखा पूरे, नारिनो तो तालीम खुद लिशी चिपाहे की कायदा, तर्जुमे कुरान, नाजरे कुरान, हिफ्ज़ुल कुरान और द दर्जी उलाना द दौरे हदीस पूरी किताबुना खुद लिशी। ज़ेरे निगरानी मोहतमिम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नाहिद सैब और नाजिम साबिर हनफी सैब। कॉन्टेक्ट नंबर तौसीफ अहमद खाकसार 0315-6386-080। मुफ्ती मोहम्मद नाहिद सैब कॉन्टेक्ट नंबर 0314-06-93-596। नुहम उस राशे कुल औलाद दा दुनिया हम खेस तकड़े और आखिरत हम खेस तकड़े, मुंसरा दाखिली शुरू दी।

कल मैसेज राजू जी अस्सलाम वालेकुम जी संगे रोजाना बेगा नाइट शो समान आई सुआ आओ खंदली में हम सम डेरो आओ जरूर बा चाद नजर को ले हा लगा गुजारा का रोजाना मी ए मी आमना फ्रॉम कलाबा ऑल सिस्टर सलाम वालेकुम अस्सलाम।

मेरा वो चीज़ में मैसेज शामिल लो कि स्टार मैसेज में शामिल कर देते उदय हाँ ओके जनाब कैमरा सर हतम दे इंशाल्लाह के जो ना पागल कमर गिलर गिनु कुबिया मुलाकात की हम जरी चैनल ना हम जरी पैनल लवर के खपल का दर्दान खली मेहरबान आरजिया की इजाजत दल वेला फमो

रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।

0: हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम कम चिप सलूर सौ रुपए बानी द सलूर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुए डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश कम चिप द ऑयली स्किन आउट
1: एनर्जेटिक रिदम दिलबर एफएम हिट रेडियो 94 स्वाभाविक

आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम सवाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन, कुरान की तिलावत, सुन्नत भरी बातें और दिल को सुकून देने वाले लम्हे। यहाँ हर लफ्ज में ईमान की रोशनी है। दिलबर एफएम 94 सवाबी। दिलबर एफएम 94।

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: आप सुन रहे हैं FM 94 रेडियो दिलबर सवाबी।
2: आप सुन रहे हैं दिलबर FM 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन।
3: आप सुन रहे हैं दिलबर FM 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन।
2: रूहानी सुकून, ईमान की रोशनी और दिल को छू लेने वाले लम्हे।
4: या हबीबी, या मुहम्मद, या नबी।
2: कुरान, सुन्नत, अखलाकी सबक और रूहानी गुफ्तगू, ये सब सिर्फ एक जगह दिलबर FM 94 स्वाबी।

आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम सवाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन, कुरान की तिलावत, सुन्नत भरी बातें और दिल को सुकून देने वाले लम्हे। यहाँ हर लफ्ज में ईमान की रोशनी है। दिलबर एफएम 94 सवाबी। दिलबर एफएम

0: व्हाइटनिंग क्रीम बेलाडोना ऑर्गेनिक व्हाइटनिंग फेस वॉश यो नवे नुम औ नवे फार्मूला आयत असु दखपल मगद तेर सरी द खात्मे द पारा डेर क्रीमुन इस्तेमाल कर तेर सरे उरक्षी औ ब्याराशी आयस्ता सुद मख तेर सरो औ दागुनो सासर बेंतहा जदरा गस्ते दे आयस्ता सु स्किन बाने दग मसलिश्ता खुतर उस पूरी तासुर ल इस किस्म क्रीम इस्तेमाल किडी निदी औ द अगे गट वजह सासु स्किन या इंतहाई सेंसिटिव दे इस किस्म क्रीम नशे लगोले द दास किस्म ना उम्मीदा समा सहर जुड़वी नोर खोंदवर बेलाडोना गोल्ड विटामिन सी फार्मूला फेस वॉश तासो हम खपल सहर समा पसान खोंदवर जुड़ के हागम द बेलाडोना गोल्ड फेस वॉश सरा और टूल और खपल मख द मुख्तलिफ किस्म मुजिर असरातोना बचो साथ
1: बेलाडोना गोल्ड फेस वॉश बेलाडोना गोल्ड

अस्सलाम वालेकुम भाई, आवाज ओके दे निगार बाजी, हाय मोस्ट वेलकम निगार बाजी, मोहम्मद ईसाम दो चार से देना डेरे मेहरबानी, मोस्ट वेलकम मोहम्मद ईसा।

0: back. Right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मध्यम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज, जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं, दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराहे रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
2: माँ वेले माले द शारजा ने काली रावड़ा
3: जो उस्ता कालू दपारा शारजी तसिंगलार शमा।
2: ओहो, पमीना बाजार टोपई की द शारजा ज्वेलर्स दुकान दे चटची द दुबई और द शारजा टूल वेरायटी मौजूद दा।
3: नुदा सिवाया का ना
2: शारजा ज्वेलर्स। प्रोप्राइटर जे ब्रदर।

ओके जी दीदी संदरी माल हिस्सा से रिस्पांस रानो को बजा शिकार बहुकू मन दा दा बंद खुदा दा शिकार बहुकू जी जी दा शिकार बहुकू दे खेरा गना लगा दा से ओकार बहुकू जी जी सास उठली बुन गालो प्रोग्राम की शामिल को दे खेरा और ड्रा के बदा खेरा जमंग सारा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।

0: back right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मद्धम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज, जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राबता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
2: तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू दर्द के लम्हात में मदरसा दारुल कुरान व सुन्ना लिल बनैन वल बनात, मोहल्ला तौहीदाबाद, गांव स्पिनकाणी, नजदीक जामे मस्जिद तौहीद।
3: जमुन को मदरसा के सहर दशपगु बजो नवाखला तर गर्मी दुल सुबजो पूरे जनानो तालीम और हम दगशान ददरु बजो नवाखला तर माखा पूरे नारिनो तालीम खुद लिशी चिपाही की कायदा तर्जुमे कुरान नाजर कुरान हिफ्ज़ुल कुरान और दर्जी उलाना दौरे हदीस पूरी किताबुना खुद लिशी ज़ेर निगरानी मोहतमिम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नाहिद सैब और नाजिम साबिर हनफी से। कॉन्टेक्ट नंबर तौसीफ अहमद खाकसार 0315-6386-080। मुफ्ती मोहम्मद नाहिद से कॉन्टेक्ट नंबर 0314-06-93-596। नुहम उस राशे कुल औलाद दा दुनिया हम खेस तकड़े और आखिरते हम खेस तकड़े मुसरा दाखिली शुरू दी।

आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम सवाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन, कुरान की तिलावत, सुन्नत भरी बातें और दिल को सुकून देने वाले लम्हे। यहाँ हर लफ्ज में ईमान की रोशनी है। दिलबर एफएम 94 सवाबी। दिलबर एफएम 94।

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: Music and information station 94